पामेला जैन की आवाज में अभी आपने मदन मोहन महेश्वरी की ये रचना सुनी, संगीत दिया था कुमार मंजुल ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी।

0: एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में आप सुनिए प्रतिभा सिंह बघेल का गाया कमलेश सोनावाला का ये गीत।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल का गाया ये गीत।

0: ये आवाज थी जुबिन नौटियाल की।
1: तोड़ के ना जाओ मेरे हम नवा।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
4: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गालिब का ये कलाम।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और आप सुन रहे थे गालिब का कलाम। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे मधुशी का गाया ये पारंपरिक गीत।

आज विनोद खन्ना जाने माने अभिनेता, जी हाँ जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना का जन्मदिन है। हम सभी जानते हैं कि उनकी पर्दे पर एक शख्सियत अलग पहचान रखने वाली थी, है ना। उनकी आवाज, उनका व्यक्तित्व और अभिनय में एक खास ठहराव था और हर किरदार को वो यादगार बना देते थे। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उन्हीं को याद किया है उनकी फिल्मों के जरिए। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग, गीतकार फारूक केसर, संगीतकार बप्पी लाहिड़ी।

कार्यक्रम में आप सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी।

0: जान का दुश्मन हाय हाय
1: हाय हाय
0: लड़का और लड़की
1: दादी
0: फिर भी ना माने
1: दादी
0: ये जिद ना छोड़े मेरे दिल को तोड़े।

ले छोटे इंसानों को, हो जाए बुढ़ा अल्लाह को प्यारा, मैं कर लूं शादी खाना आबादी, सुलझ जाए पल।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की, फिल्म का नाम परवरिश।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम तुम और वो, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे। स्वर आशा भोसले और विनोद खन्ना के, वर्मा मलिक के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

0: हरे
1: हरे हरे
0: काहे डरे डरे
1: हरे हरे
0: आज चाले तुझा
1: राधे श्याम।
2: और आइए अब सुनते हैं साहिर की बोल, राहुल देव बर्मन की धुन, आशा भोंसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजें। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गरम खून। इसे संगीत में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अनजान का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध की आवाज सुनिए। स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम खून पसीदा।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। गीतकार गुलशन बावरा हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में सुनिए। फिल्म का नाम है हेरा फेरी। इसे इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज याद किया मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को, और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दोस्तों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए आज फिर आपसे हमारी मुलाकात हो रही है ना। और दोस्तों, कुछ मुलाकातें बस मुलाकातें नहीं होती, वो एक एहसास बनकर दिल में उतर जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में चलिए उन्हीं खास मुलाकात की गलियों में, जहां पहली नजर, पहली बात और पहली मुलाकात एक खूबसूरत याद बन गई हमारी जिंदगी में, उसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। तो हमारी इबारत आज क्या है, आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपनी इबारत या यूं कहें टेक्स्ट पढ़े देते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में भी वो पहली मुलाकात किसी से भी हो सकती है, उसका जिक्र आप भी अगर करेंगे तो कार्यक्रम और भी अच्छा लगेगा और ये मुलाकात और रोचक हो जाएगी। हमारी आज की इबारत है, आपको अपनी पहली मुलाकात याद है? कभी वो पहले पहले प्यार की मुलाकात जैसी खूबसूरत रही होगी, कभी कुछ और, और कभी लगता है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, बस इसी ख्याल से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वैसे सच कहें तो कई बार ये मुलाकात एक बहाना है, असली बात तो दिल की होती है। और किसी खास से मिलकर लगे तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, फिर दो बेचैन दिल मिल जाएं तो दो चैन चाहने वाले, दो चैन ना चाहने वालों की मुलाकात हो सकती है, और पता ही नहीं चलता कि कब छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई है। फिर लगता है जैसे मुलाकातों का मौसम आ गया, मगर कुछ मुलाकातें इतनी हसीन होती हैं कि कल की हसीन मुलाकात के लिए आज की रात की यादों में कट जाती है। और कभी कभी दिल डरता है कि कहीं जाने वाले से मुलाकात न होने पाए। तो बस आज के इस सफर में मुलाकात के इन्हीं रंगों से हम रूबरू होने वाले हैं। चलिए तो सुनते हैं कार्यक्रम में कुछ खास गीत, ऐसे गीत जहां मुलाकातों का जिक्र है और जिंदगी की कुछ खास मुलाकातें हमारे साथ उम्र भर चलती हैं इन गीतों की तरह। किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

किशोर कुमार और आशा भोंसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था द ग्रेट गैम्बलर। हमारे श्रोता अपनी अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी टिप्पणियों के तरह से। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं मगर अपने पीछे भावनाओं की ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो वर्षों तक मन में ताजा रहती हैं। पहली मुलाकात की झिझक, आंखों में छिपी अनकही बातें, दिल की बढ़ती धड़कन और किसी अपने के साथ बिताए कुछ पल, इनमें एक पूरा संसार समाया होता है। कभी कोई मुलाकात प्यार की शुरुआत बन जाती है तो कभी किसी बिछड़े हुए शख्स से आखिरी मुलाकात जीवन भर की स्मृति। मुलाकातें जिंदगी की किताब के वे पन्ने हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात और बिछड़ना, फिर उसी मुलाकातों की याद में खो जाना, अगली मुलाकात तक प्रेमियों की तड़प आज के गीतों में है। एक श्रोता ने लिखा है कि पहली मुलाकात, प्यार की मुलाकात, यादगार मुलाकात और बिछड़ने के डर तक, ये सभी बातें इस मुलाकात में शामिल हैं। कुछ मुलाकातें पल भर की होती हैं लेकिन उनकी यादें उम्र भर दिल में रहती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी जिंदगी में अचानक कोई मिलता है और हमें पता भी नहीं चलता, वो मुलाकात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली है। पहली मुलाकात भी कितनी अजीब होती है न कोई वादा न कोई रिश्ता, बस दो अजनबी होते हैं लेकिन जाने न जाने क्यों एक शख्स दिल को अपना सा लगता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुलाकात यानी दिलों का काव्यात्मक सफर, ये केवल सवाल जवाबों का सिलसिला नहीं बल्कि दो दिलों के बीच बुना हुआ एक नाजुक रेशमी पुल है। एक उत्सुक मन दूसरे समृद्ध मन की गहराइयों में झांकने का प्रयास करता है, तब शब्द और अर्थों के पर्दे एक एक करके आसानी से खुल जाते हैं और कोई नहीं कह पाता कि आज की मुलाकात बस इतनी। वाह क्या बात है, बहुत ही काव्यात्मक तरीके से आपने अपनी बात कही है। और आगे आपने कल के कार्यक्रमों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने कहा है कि रिश्तों की गहराई समय की मोहताज नहीं होती बल्कि भावनाओं की सच्चाई पर टिकी होती है। अक्सर सफर के दौरान किसी बस, ट्रेन या हवाई जहाज में पहली मुलाकात किसी ऐसी व्यक्ति से हो जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते। वो कुछ घंटों का सफर होता है मगर बातें करते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं और स्टेशन आते ही अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। शायद हम दोबारा कभी उनका चेहरा भी न देख पाए, न ही उनका नाम याद रख पाए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के दौरान मिली मुस्कान, उनकी कही कोई गहरी बात या उनका वो निस्वार्थ व्यवहार हमारे भीतर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। बहुत सुंदर। अगला गीत सुनने से पहले आपके लिए हम लाए हैं दो सवाल, बहुत प्यारे से और सीधे साधे से। आप अपनी जिंदगी को, अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को जब खंगालेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। हमारा पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आज तक आप नहीं भूले। सवाल एक बार फिर से कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज तक नहीं भूले। कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गहरी बात। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है। सवाल एक बार फिर कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है। खंगालिए अपनी यादों को, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपनी स्मृति को, और याद कीजिए वो दिन जब आपको कोई ऐसा शख्स मिला, वो कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, है ना, कोई भी, या आपने किसी जगह पर जाकर प्रकृति से मुलाकात की हो, आपको लगा हो कि वाह क्या क्या सुंदर नजारा है। मुलाकात कहीं भी किसी से भी किसी भी रूप में हो सकती है। ये आप सोचिए कि आपकी वो पहली मुलाकात कौन सी थी जिसे पाकर आप धन्य हो गए या आपको आज तक याद है उनके कड़वे अनुभव। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन।

जी हाँ, तो पहली मुलाकात इतनी ही रोमांचक होती है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, उसका ही जिक्र आपको करना है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कितनी लंबी जुदाई, एक मुलाकात के लिए तरस रहे थे नैना, लेकिन जितनी लंबी जुदाई थी उतनी ही प्यार से सराबोर थी वो मुलाकात। अरे आपने इशारों इशारों में बात लिखी है, लिखते कुछ तो हमें पता चलता कि कौन सी थी वो मुलाकात। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गीतों को चुना गया है, मुलाकात जैसे शब्द को परिभाषित करने के लिए, वैसे तो मुलाकात कब, किससे और कहां, जीवन के किस मोड़ पर हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, परंतु कुछ मुलाकातें जीवन भर याद आती हैं। हाँ तो बताइए ना, कौन सी ऐसी मुलाकात थी आपसे जो जीवन भर से आपको याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें भी कितनी अजीब होती है, वैमनस्यता के सारे जख्म एक पल में सी देती है, न कोई शिकायत बचती है न कोई गिला, बस निगाहें झुकती हैं और दिल सब कह देता है। मुलाकातें भले ही चंद लम्हों की, ऊपर उनकी खुशबू उम्र भर यादों के गुलदस्ते में महकती रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें ही मोहब्बत की मंजिल मुकम्मल करती हैं, ये वो मंजर है जहां मिलकर महबूब और महबूबा एक दूसरे के मुखातिब होकर मानसिक मनोमालिन्य दूर कर मिलन के मधुर मर्म का संज्ञान लेते हैं। आपसी भेद और मनमुटाव दूर करने में मुलाकातें ही महत्वपूर्ण माध्यम है, वरना मोहब्बत के मारों को इस मोहब्बत में मृत तृष्णा भांति अतृप्तता ही महसूस होती है। और आगे आपने हमारी तारीफ में भी लिखा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सफर तो क्या विविध भारती ने जिंदगी ही सुरीली कर दी है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने 36 साल पहले का वो दिन याद करा दिया जब मैं अपने पहले और आखिरी प्यार से पहली बार मिली थी, यानी मेरे पति देव मुझसे मिलने आए थे, साथ में उनकी दीदी भी थी और हम पूरा दिन साथ साथ रहे, शॉपिंग की और फिर 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। ये मुलाकात एक बहाना है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला गाना यही आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुलाकात याद नहीं बनती, मगर कुछ मुलाकातें दिल में ऐसी उतर जाती हैं कि वक्त बीत जाता है पर उनकी याद कभी नहीं जाती। वहीं एक श्रोता का कहना है कि क्या जिस दिन हम विविध भारती से मिले उसे भी प्यारी मुलाकात कहा जा सकता है, पर हमें उस मुलाकात की न तो तारीख याद है न ही दिन, बस इतना याद है जब पापा विविध भारती चलाते थे तब हम बहुत छोटे थे, हमें लगता था इसके अंदर कैसे रहते हैं लोग, कहां से आवाज आ रही है। बाद में धीरे धीरे समझ आया कि हम दीवाने हो गए इस विविध भारती के, क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही हाल हर बच्चे का होता है जब वो पहली बार रेडियो सुनता था कि भाई इसके भीतर कौन है, कहां बैठते हैं लोग, ये हर बच्चे के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की सालगिरह पर लाइव, अच्छा आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपकी बातों की तरह ही आप चुलबुली और प्यारी दिखती हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, शुक्रिया धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि ये भी एक तरह से आपसे मुलाकात ही हो गई, रूबरू न सही पर हुई तो। हाँ बिल्कुल होती है आपकी और हमारी मुलाकात तो। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबादत मुलाकात पर आधारित है और आपसे मुलाकात होगी दोपहर।

एक बजे। जी हाँ, देखिए हो भी गई। एक श्रोता ने कहा है कि बस कुछ टाइम से ही मैं कमेंट करने लगी हूं और मैंने इस कार्यक्रम में अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, आपकी आवाज भी अच्छी लगती है। चलिए, आपने शुरू कर दी है तो इस शुरुआत को अंत तक रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है, जब आप किसी से दिल से मिलना चाहते हैं और वो मुलाकात नहीं हो पाती तो यह अधूरी चाहत आत्मा को बहुत गहरी बेचैनी और तकलीफ दे जाती है। इसे ही शायद लोग इंतजार का दर्द या अधूरी मुलाकात की कसर कहते हैं। जब मन भावनाएं गहरी हो तो ये दूरी और भी ज्यादा भारी महसूस होती है और ये सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात नहीं होती, ये किसी से भी हो सकती है, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार। तो समय रहते मुलाकात करके गिले शिकवे दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अफसोस ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सुनते हैं ये गीत खानदान फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श लायलपुरी की रचना और खय्याम साहब की धुन। आप भी अपनी जिंदगी की वो मुलाकात बताइए जिसे आपको लगा ये मुलाकात तो बहाना था, असल में तो हमें मिलना था।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखी है, लेकिन इससे पहले हम सवाल दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज भी भूले नहीं। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए बहुत खास है। तो हमारे श्रोता लिखती है कि चेहरे की रौनक छीनने वाले से कभी मुलाकात न हो तो बेहतर है, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम किसी से मिलते हैं और सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करता, आपको ठेस पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो ऐसी मुलाकात कोई भी नहीं करना चाहता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी अनजाने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ यादों में बस जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। कभी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होती है तो ये दिल में बस जाती है और मिलने की चाहत बढ़ जाती है और हम सफर भी बन जाती है। आज उनसे पहली मुलाकात, ये जो गाने हैं इन्हें पसंद हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कोई मुलाकात कितनी अजीब होती है, न कोई तैयारी न कोई उम्मीद, न ये आभास की सामने आया ये अजनबी कभी इतना अपना हो जाएगा, बस कुछ पल में कुछ अनकही बातें आंखों के बीच ठहर गया, एक अनजान सा संवाद, कुछ रिश्तों की नियति साफ चलना नहीं, याद बनकर उम्र भर साथ रहना होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में बड़ी देर से मिलते हैं मगर उनसे मुलाकात दिल में ठहर जाती है। उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में उनकी जगह हमेशा से खाली थी। जिंदगी में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती न मुलाकातें, कभी कभी किसी विशेष से मुलाकात उस ईश्वर की मौन कृपा की तरह है जो ये एहसास दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप किसी के लिए पूरी दुनिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, आपकी अंतिम पंक्ति ने दिल जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंदीदा प्रस्तुतकर्ता हैं आप। अच्छा, आज मैंने पहली बार कमेंट किया है, प्लीज आप पढ़िए, प्रोग्राम में रोज सुनती हूँ। देखिए हमने कर दिया, आपने कुछ लिखा नहीं, आप लिखती तो हम उसे भी पढ़ देते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा जॉब लग गया। दोनों घरों के बड़ों के द्वारा हमें पसंद करने के बाद मेरी होने वाली धर्म पत्नी और मुझे अजमेर के रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात कराई गई। वो जो नजरें झुकाए बैठी थी और मैंने मन में माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए मन में ठान लिया था कि बस यही है मेरे सपनों की रानी। बाद में अकेले में खूब बातें भी करी थी। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूली जीवन में ट्यूशन पढ़ने के दौरान मेरी गलतियों पर मास्टर जी के डांटने पर उसकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, फिर नजरें झुका लेना, उफ, पहली मुलाकात ऐसे ही मुस्कुराने पर कई महीनों तक चली। कुछ हुआ तो नहीं मगर वो मुस्कान भरी मुलाकात अभी भी दिल को कोरेद देती है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं जनाब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। अरे तो लिखते हैं, अगर आपको पहली एक तरफा प्यार हुआ था तो बताते कैसे हुआ क्या हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार नहीं होता, विश्वास होता है, बाद में प्यार होता है। ये अपने अपने अनुभव होते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सफर की हर मुलाकात यादगार बन जाती है और आपका साथ भी बहुत अच्छा लगता है। सुंदर गीत के साथ छोटी सी मुलाकात प्यार बन जाती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हमारी मुलाकात सुरीला सफर से हो जाती है तब किसी अन्य की मुलाकात की जरूरत होती ही नहीं है। जब आप किसी कमेंट्स को पढ़ने के बाद कहती हैं कि वाह क्या बात है क्या बात है, बस मजा आ जाता है, तो बस आपका सिलसिला बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। अरे आप लोग इतनी शानदार समीक्षाएं भेजते हैं, टिप्पणियां भेजते हैं, तो वो निकल जाता है मुंह से कि वह क्या बात है, दाद देनी पड़ती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हाँ मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी, याद है मुझे आज तक। अरे बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकात जीवन में ऐसी होती हैं जो भूल कर भी याद रहती हैं, कभी कभी ख्यालों में वो मुलाकात यूं ही याद आ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें वक्त के दायरे से परे होती हैं, वो घड़ियों के सेकंड या मिनटों में नहीं बल्कि उस शिद्दत से नापी जाती हैं जिसे दो रूहें एक दूसरे को छू लेती हैं। वक्त का पहिया भले ही आगे निकल जाए पर दिल के किसी कोने में वो एक पल हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उन्हीं पलों की खामोशी में एक ऐसी आवाज होती है जो भीड़ में भी तन्हाई का एहसास नहीं होने देती और जिंदगी के लंबे सफर को एक मीठी महक से भर देती है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत गहरी बात आप लोगों ने लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी मुलाकात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, बहुत पुरानी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत जिंदगी।

तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही सुंदर विचार लिख रहे हैं कि क्या लिखा है, हाँ लिखा है कि नमस्कार, मुलाकात अजनबी से हो, पहचान वाले से, छोटी हो या बड़ी, समाज में चलता रहता है। कुछ मुलाकातें तो सीने में याद बन जाती है, किसी से मुलाकात में डर भी लगता है और कोई मुलाकात प्यार में बदल जाती है और कई मुलाकातों से आपसी गलतफहमियां भी दूर होती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात फेस टू फेस नहीं बल्कि ऑनलाइन एक दोस्त से हुई और पहली बार ही एक विशेष प्लेटफॉर्म पर पता चला। पता नहीं क्यों उनके नाम के आगे रुकी और कुछ दिनों पश्चात ही उनका मैसेज आया और हमारी बात हुई। ऐसा लगा जाने कब से एक दूसरे को जानते हो पर आज तक कभी मिले नहीं हम। एक रिश्ता रूहानी था जहां देखने की कभी चाहत ही नहीं हुई। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात लिख दी आपने। और आपके इस बेबाकी को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी बात, अपना दिल हमारे सामने रखा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो कहूंगी कि आदमी किसी से भी मिले तो कभी नहीं बिछड़े। मैं दो शख्स को हर दिन तलाशती हूं। पहली मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, नाम था उषा शाह। इन दिनों नहीं मिल रही हैं और मैं वो असम में थी और मैं भागलपुर में। दूसरों में जब मैं दिल्ली में थी तो वो मिली, सिर्फ ये पता कि वो उत्तर प्रदेश में थी। उनके लिए भी मेरे मन में बहुत बेचैनी होती है। आपने अपनी बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार नहीं लिखा इसलिए हमें पढ़ने में दिक्कत आई है। कुल मिलाकर ये पता चला कि आपकी दोस्त आपसे बिछड़ गई है जिसको आप ढूंढ रही हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी 3 अक्टूबर को इलारुण जी से आपकी मुलाकात हुई। इससे पहले इलारुण जी ने इस मुलाकात में मोरनी बागा नाचे पर सभी महिला उद्घोषकों को नृत्य करवा दिया जिसमें आपका नृत्य भी देखने लायक था। ये मुलाकात आपके लिए यादगार बन गई होगी। ऐसी ही कई मुलाकातें हैं मेरे साथ भी हुई। उन दिनों मेरी पोस्टिंग संसदीय ग्रंथालय में थी, वहीं पर लोकसभा टेलीविजन के स्टूडियो में भी थे जो अब भी है। चमड़े से बनी सफेद चप्पल पहने, सफेद पतली कटारीदार मूछे, सिर पर सारे सफेद बाल, सफेद रंग का ही कुर्ता पजामा पहने एक लंबी कदकाठी के व्यक्ति चले आ रहे थे। उनसे एक मुलाकात नाम से इंटरव्यू होना था। इस पूरे इंटरव्यू को मैंने स्टूडियो में बैठकर देखा। इंटरव्यू के बाद मैंने उनके पैर छुए और जलपान के बाद उन्हें छोड़ने गेट तक आए वो सफेद कुर्ता पजामा पहने शख्स थे, गीतकार गुलजार साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज मुलाकात पर सुरीला सफर चलेगा ये वाक्य याद आ गया। देखिए आपने अपने दिल को खंगाला ना। गाने तो आपने सारे गद्यांश में लिख ही दिए थे। इन मुलाकातों के बीच एक गीत भूल के जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है पोस्ट कर रहा हूं। अच्छा आपने दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई। बहुत सारे कहते हैं मुलाकातों पर, है ना। और वहीं एक शख्स लिखते हैं कि अपने शहर में घूमते समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से अचानक मुलाकात हुई और पहली बार ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हुआ, पर पतिदेव ने कहा कि ये वही है जो हम सोच रहे हैं। फिर हमने उनके पास जाकर हाय हेलो किया और ये मुलाकात यादगार बन गई। बहुत सुंदर, आपने हमारे सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज जाते समय अक्सर मिल जाते थे, कॉलेज जाना क्या छूटा, मुलाकात होना ही बंद हो गया। अरे क्या बात है, ऐसी बात, चलिए क्या कहूं मैं आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ देर से पहुंचे हैं आपके कार्यक्रम में लेकिन आखिर मुलाकात हो ही गई है। विविध भारती से इतना प्यार जो है, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर से 12 किलोमीटर दूर गांव जामनिया खुर्द से कन्हैयालाल और कई लोग मिलकर आपकी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो ऐसा ही हम चाहते हैं। बहुत सुंदर, आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि जवाबी संदेश दिया आपने, यानी हमारे सवाल का जवाब दिया है कि टीचर की पोस्ट देनी थी, मुलाकात कहनी थी, कम शब्दों में दिल जीतने वाली बात, अनपेक्षित सवालों का आघात बन गई थी बुरी हालात, फिर भी न जाने कैसे मिल गई थी नौकरी की सौगात। बहुत सुंदर। और एक श्रोता कहते हैं कि उस जमाने में तो सब कुछ अरेंज करके ही किया जाता था इसलिए पहली मुलाकात भी प्री प्लान्ड ही थी। फिर दूसरी मुलाकात के बाद तो शादी हो गई पर उसके बाद की मुलाकात जो ही उसने अरेंज मैरिज वाले भाव को ही बदल दिया और रिश्ता जान पहचान से बढ़कर पक्का हो गया और उस मुलाकात के दम पर हमारे प्यारे रिश्तों की नींव पड़ी है और ये मुलाकात हमेशा के लिए यादगार बन गई है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कि जब आप पहली बार मिली होंगी और उसके बाद जब आपका ब्याह उसी शख्स से हो गया तो अब जिंदगी तो बस क्या बन गई, बहुत शानदार है ना। आइए सुनते हैं फिल्म पालकी का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी की बोल और नौशाद साहब की धुन। कभी ख्वाबों में आपकी भी मुलाकात किसी से होती है, बताइएगा।

तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। आपकी भी कभी ऐसी कोई मुलाकात हुई हो ख्वाबों में, सपनों में और अचानक, है ना? तो बताइएगा कम शब्द

में बहुत कम समय हमारे पास है और श्रोता बराबर जवाब दे रहे हैं हमारे सवालों का। एक श्रोता लिखते हैं कि फेसबुक विविध भारती से जुड़कर बहुत सारी ऐसी सहेलियां मिल गई, पता नहीं इनसे मुलाकात कब होगी, पर ऐसा लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। हम फोन पर हमेशा दिल खोल कर बात करते हैं, तब नहीं लगता कि मुलाकात कोई जरूरी है। क्या बात है, आप फेसबुक से जुड़ गई हैं और एक परिवार बना लिया है आप सभी लोगों ने, तो जाहिर है सभी सखियां आपस में बात करती हैं, है ना। क्या बात करती हैं आप लोग बताइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी पिछले महीने यूनुस खान जी इंदौर आए हुए थे और मैं पास में ही रहता हूं, पर यूनुस खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ा अफसोस हुआ। अरे कोई बात नहीं, वो जब दोबारा आएंगे तो पता करिएगा कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और आपको कहां मिलना है। कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी उनसे और आपका ये संदेश हम पहुंचा भी देंगे उन तक। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि धर्मेंद्र जी, और जो आपने पूछा था मोहब्बत जिंदगी है, ये फिल्म एक श्रोता ने देखी है और कहते हैं कि इसमें धर्मेंद्र और राजश्री थे। अच्छा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, वो मुझे देखने आए और बस बात गई बन गई और शादी हो गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़की वालों ने मुझे देखने के लिए घर बुलवाया, लड़की के बड़े भाई ने कई प्रश्न किए, सभी के सही जवाब दिए। बाहर छोड़ने आए तब बड़े भाई ने कहा और कोई सेवा, तो मैंने जवाब दिया कि मेहरबानी बनाए रखें, तो बड़े भाई ने कह दिया कि अभी तो आगे सोच कर करेंगे। हम दोनों कन्फ्यूज थे, शर्म भी आ रही थी, आगे चलकर एक मुलाकात रिश्ते में बदल गई है और जल्दी ही शादी भी हो गई है। क्या बात है, बधाई हो। एक श्रोता लिखते हैं कि यादगार मुलाकात तो हमारे शहर अजमेर में एक कार्यक्रम में महान संगीतकार आदरणीय आनंद जी आए हुए थे। क्या बात है, कल्याण जी, आनंद जी वाले आनंद जी। कार्यक्रम के बाद मैं उनसे मिला और मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, अरे आप सिंधी हैं? अरे भाई मैं भी सिंधी हूँ, कच्छ का रहने वाला हूँ, और वो मुझसे सिंधी में ही बात करने लगे जैसे मुझे बरसों से जानते हो। ऐसे उनका मेरे लिए अपनत्व से बात करना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बिल्कुल, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी मुलाकात आनंद जी से हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिमला में एक पंजाबी फैमिली से मुलाकात हुई 2016 में, वो अच्छा बीकानेर से थे, उनके कई साल तक बात होती रही लेकिन एक दिन पता चला कि वो शांत हो गई और वो मुलाकात यादगार बन गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती मुझे बहुत पसंद है और 10 साल से मैं कोशिश कर रही हूं यहां से जुड़ने की, कॉल करने की, लेकिन फोन नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो आप फोन करते रहिए, ऐसी क्या बात है। बहुत सारे लोग पता है बरसों से फोन लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे पतिदेव से जब पहली मुलाकात हुई तो वो बताते हैं, पर एक वादा करिए, हंसेंगी नहीं आप। अच्छा, नहीं हंसेंगी पर हमें आप लोगों के संदेश पढ़कर हंसी आ जाती है क्योंकि उसमें प्यार और अपनत्व और मिठास छुपी होती है, मैं हंसे बिना नहीं रह पाती। चलिए नहीं हंसूंगी, पढ़ तो दूं। आपने लिखा है कि कोई न आपके साथ सभी श्रोता भी हंसेंगे। अरे श्रोताओं मत हंसिएगा, है ना। वो लिखती है कि हम उनसे मिले जब हमने उन्हें वरमाला डाली, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें देखा ही नहीं था, इतने हम डरे हुए थे, नहीं बात की थी कभी, आज सोचते हैं तो हंसी आ जाती है। और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कैसा था, पहले हम तो ऐसा कभी नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आप खुद ही हंस पड़ी है और आप हमें हंसने के लिए मना कर रही है। बिल्कुल वो समय ऐसा था जब शादी होती थी माता पिता की बातों से, माता पिता की सहमति से, और लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, लेकिन वो डर, वो है, वो होता था दोनों तरफ, लेकिन लड़कियों में खासतौर से ज्यादा होता था। लेकिन आपके बच्चों ने सही कहा कि आज समय बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, मुलाकात करने के तरीके बदल गए हैं और वो का फलसफा भी बदल गया है। तो मुलाकात करते हुए हम यहां तक तो पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये फिल्म है लेडीज टेलर। इसके बारे में भी बताइएगा, आपने इस फिल्म को देखा था या इस फिल्म के गाने आपको पसंद है, कौन कौन से गीत है। फिलहाल सुनिए ये गीत।

0: जी हाँ, दो चाहने वालों की मुलाकात कैसी होती है, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अभी दिल खोलकर आपने लिखा नहीं है। चलिए फिर कभी किसी कार्यक्रम में दिल खोलिएगा और बताइएगा कि कभी किसी की मुलाकात क्या रंग लाई आपके जीवन में, चाहे वो मुलाकात सामने हुई हो, ख्वाबों में हुई हो, कहीं भी हुई हो, है ना। अब अगले किसी कार्यक्रम में आप दिल खोलकर अपनी बात रखेंगे। वैसे एक श्रोता लिखते हैं कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कई गाने जैसे आप ही गा रही हैं। अच्छा, मुलाकात तो हमारी अपने होने वाली धर्मपत्नी से हुई थी, वो बहुत शानदार थी, जो हमें हमेशा याद रहती है, बहुत सुंदर, रहनी भी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हम एक बार बैंकॉक से पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, नागपुर के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, उसी समय मुझे पुराने महाभारत के श्रीकृष्ण यानी कि नितेश भारद्वाज अपने सामने बैठे दिखे। मैंने अपने पति के कान में धीरे से कहा और बाद में हम दोनों ने उनसे मिलकर फोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर, वो पल आपको बहुत याद होगा, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती से तो मुलाकात सबसे जब से होश संभाला है तब से हो गई थी, आज भी हो रही है, बिल्कुल होती रहनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर सपनों में मुलाकात की बात आप करते हैं तो हमें सपने तो बहुत आते हैं और कई दिन तक कई नए नए चेहरों से मुलाकात तो होती है, लेकिन सुबह उठकर फिर भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रहता, लेकिन नए नए चेहरे सपने में अगर आते ही रहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि युवाओं को बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं, तो ये बात सच है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, वैसे तो प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को हम विविध भारती के पेज पर देखते हैं, लेकिन एक तमन्ना है कि आप सभी से रूबरू मिलने की उम्मीद है और मेरी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी। क्या बात है। तो चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक अब आ गए हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म का नाम चरस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गुड नाइट। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
0: हमें गुड नाइट नहीं कहना है अभी, तो हम रात को कहेंगे, अभी तो गुड डे चल रहा है।

तो दोस्तों, इस कार्यक्रम से अब हम भी जुदा होते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए कार्यक्रम में और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

से मिले प्यासी प्यासी कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

की घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन कारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

साथ है, दिल मेरा नाचे चुनक चुनक, नाचे जे हम तुमर नक नक, दिल की उमंगे झूम के गाए, आज खुशी भी साथ है क्या।

0: ഹേവി.
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखियों सखियों को और आरती आपको भी नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार.
2: चिंचल आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार.
1: तो भाई आज बहुत सारे विषय हैं जिन पर हमारे जो फेसबुक से जुड़े श्रोता हैं उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं.
2: बिल्कुल.
1: लेकिन फिर भी हम विषय बताते हैं कि
2: हाँ, जिससे कि हाँ, जिससे कि हम हमारे जो श्रोता उनको एक बार हम अपने मुंह से बता सके.
1: हाँ, हर श्रोता नहीं जो फेसबुक पर जुड़ा हुआ है, कई लोग सिर्फ रेडियो सुनने के लिए अपने आनंद के लिए भी सुनते हैं.
2: हाँ, ये तो है.
1: तो भले वो हमें संदेश ना करें लेकिन उनके लिए भी क्या विषय है ये जानना जरूरी है. तो आज है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस, इसके बारे में बात होगी.
2: और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं संगीता देवी जी, जो कि हैं संस्थापक दिया माटी की, और साथ ही हम लेकर आए हैं मुहावरों की दुनिया.
1: तो कौन सा मुहावरा है भाई, आज किस मुहावरे पर हम बातचीत करें?
2: आज हम मुहावरे पर बात करने वाले हैं कि अक्सर जो हम लोग करते हैं ना काम, कि अब भाई हम करेंगे करेंगे करके ओखली में सर दे ही देते हैं कि चलो कर ही देते हैं, अब क्या है. तो अच्छा, ओखली में सिर देना,
1: ओखली में सिर देना हुआ एक मुहावरा, इसी को दूसरे मुहावरे के साथ भी जोड़ते हैं ना.
2: हाँ,
1: ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डर.
2: बिल्कुल, अब आपने उसमें दाल ही दिया है ना, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा अब.
1: जी, और कुछ हल्की फुल्की बातें भी होंगी, और ये हल्की फुल्की बातें भले है लेकिन बड़े काम की है, क्योंकि अब जो समय है त्योहारों का समय आ गया भाई, आ चला. और त्योहार आने का मतलब क्या,
2: त्योहार के नाम से ही मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि त्योहार मतलब बढ़िया खुशियां, एकदम चकाचौंध हर तरफ.
1: वो जो खुशियां और चकाचौंध ये आती है थोड़ी सी साफ सफाई, सजावट घर की होती है,
2: काम करना
1: तो
2: पड़ता
1: त्योहार
2: है.
1: मतलब सजावट भी है, थोड़ी साफ सफाई भी है, थोड़ा सा घर में काम भी हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाएंगे ना सबके लिए, खाने के लिए, मेहमानों के लिए भी और घर के सदस्यों के लिए भी, तो वो भी एक काम होता है. और इन चीजों के लिए भाई खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी, वरना सजावट का सामान कैसे आएगा, घर में पकवान बनाने का सामान कैसे आएगा. तो खरीदारी भी
2: एक समझिए एक हमें आनंद का विषय है. खरीदारी करने जाना होता सच्ची में, खरीदारी करने जाना है मतलब सोच के भी इतना अच्छा लगता है कि अब जाएंगे जो मन करेगा देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें जो देखेंगे वो हम अपने बजट के हिसाब से खरीदेंगे.
1: जो त्योहारों का समय होता है ना, इसी उत्सुकता और उत्साह की वजह से जो विक्रेता है वो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑफर्स निकाल देते हैं लोगों को और लुभाने के लिए, ताकि लोग उनकी तरफ खरीदारी के लिए और आकर्षित.
2: बहुत सारी चीजें होती हैं और तरह तरह के ऑफर तो होते हैं, साथ में कई सारे और जो इस तरीके के विक्रेता होते हैं ना, तो कुछ जो लुभावने होते हैं इसमें वो ठगी का भी वो कर लेते हैं चीजें, तो इससे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए.
1: ठगना भी नहीं है, अपना बजट भी नहीं बिगाड़ना है.
2: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम को संभालना है तो भी गाने
2: गीत तो सुनना पड़ेगा.
1: जी,

0: आरती बहुत खूबसूरत गीत था और इसके जो शब्द थे ना कि तन मन की सुध-बुध गवा बैठी, कोई चीज जब दिल में समाती है, हमारे मन में बस जाती है ना, तो वो इतनी भाती है कि हमें सुध-बुध नहीं रहती। और इसी तरह से जब हम किसी काम को बहुत डूब कर करते हैं तो उसकी सुध-बुध नहीं रहती और ऐसा काम हमें सफलता भी देता है।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही हम एक महिला को लेकर आए हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो है संगीता देवी, जो कि संस्थापक हैं दियामाटी की। तो संगीता देवी की कहानी बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार से जुड़ी हुई है। ग्रामीण महिलाओं की खेती और पशुपालन से जुड़ी रोजमर्रा की समस्याओं ने उन्हें ऐसा सामूहिक मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें महिलाएं केवल किसान या लाभार्थी बनकर न रहकर कंपनी की शेयर धारक और निर्णय लेने वाली सदस्य बने।
0: तो उन्होंने जो निर्णय लिया ना आरती, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि ग्रामीण महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जोड़ना जो ज्यादा तकनीक के बारे में नहीं जानती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका जो काम है वो खेती से जुड़ी है, पशुपालन से जुड़ी है, तो उन्हीं के काम को लेकर उन्हें आगे बढ़ाना। और संगीता देवी की कहानी जो आज हम बता रहे हैं, इसकी सबसे खास बात यही है कि ये केवल एक कंपनी की स्थापना की बात नहीं है, ये उस सोच की कहानी है या उस सोच की बात है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को मदद पाने वाली महिलाओं से निर्णय लेने वाली उद्यमी महिलाओं को बदलने का प्रयास किया गया। यानी कि वो महिलाएं जो अब तक सिर्फ दूसरों से मदद मांग रही थी,
1: सही बात है,
0: वो उठकर इतनी सशक्त बनी कि वो उद्यमी बनी और दूसरों की मदद करने के काबिल भी बन सकी। और इस कंपनी की नींव गांव की महिलाओं ने, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें होती है ना, बस वहीं से पड़ गई।
1: बिल्कुल, इससे ये भी हमें पता चलता है ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो या हम बहुत सारी पूंजी इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू करें। अगर हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास कोई हुनर है तो हम छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब देखा गया कि किसान बीज, खाद और पशुपालन से जुड़ी हर छोटी जरूरत के लिए बाजार और बिचौलियों पर निर्भर हैं, तब लगा कि अगर महिलाएं मिलकर अपनी कंपनी बनाएं और खुद फैसले लें तो वो सिर्फ अपनी आय ही नहीं बढ़ा पाएंगी बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकेंगी।
0: आरती, और आरती देवी की यात्रा हमें बस यही तो बताती है कि गांव की जो महिलाएं हैं उसके पास संसाधन बहुत सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी सामूहिक सोच है, इनकी सब मिलकर जब वो किसी बात पर विचार करती हैं, सोच करती हैं, उसे अंजाम देती हैं, या प्रशिक्षण उनके पास जो है, जो बाजार की जो समझ है और नेतृत्व का अवसर अगर उनको मिल जाए, तो ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली एक उद्यमी महिला भी बन सकती हैं।
1: बिल्कुल, और इस कंपनी की कहानी में असली माटी जो है, अगर कहा जाए दिया माटी माटी कहे, तो माटी जो है वो

0: और महिलाओं को ये समझाया कि वो किसी भी सरकारी योजना की लाभार्थी नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना जहां इन्होंने ये जब ये सब नए शब्द थे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के सिवा या गांव की खेती के सिवा कुछ नहीं देखा था, कुछ समझा नहीं था, वहां उनको इतना सशक्त बना देना, इतना ऊपर तक ले आना बहुत बड़ी बात है। और उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। और सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं का भरोसा जीतना था। कंपनी और शेयर जैसे विषय उनके लिए बिल्कुल नए थे, तो उनको समझाया गया कि उनकी अपनी कंपनी है।
0: और आरती, जब उन्होंने देखा कि हर फैसला बहुत पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि उनसे छुपाकर कोई भी चीज नहीं की जा रही है और उनकी राय को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कंपनी की तरफ जो उनका जुड़ाव था वो भी बहुत मजबूत हुआ। और उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल खेती करना नहीं था बल्कि किसानों की सामूहिक बाजार शक्ति है उसको बढ़ाना था।
1: बिल्कुल, और कंपनी के माध्यम से महिलाओं को बीज, खाद और खेती से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी उपज को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और साथ ही बकरी पालन भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना, यानी कि आप समझ लीजिए जो भी कुछ गांव में होता है सभी चीजों को बाजार का एक प्रोडक्ट की तरह से उन्होंने प्रयोग किया। और स्थानीय महिलाओं के लिए बकरी पालन आय का प्रमुख साधन था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण होता है पशु आहार होता है और बाजार तक पहुंच, ये कुछ समस्याएं थी।
0: बिल्कुल, अगर आप किसी भी तरह का कोई पशु पालन कर रहे हैं तो अपने पशु को भी स्वस्थ रखने के लिए जो उसका आहार है उस पर खास ध्यान देना होता है। और इसी संदर्भ में उनकी कंपनी ने दमदार दाना इस नाम से एक पशु आहार विकसित किया। इसके बाद संगीता देवी के मन में विचार आया कि भाई जब कपड़े और दूसरी आवश्यक जरूरतें ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं तो क्यों ना ये जो पशु आहार है, बकरी का आहार है, इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और इसी सोच के साथ जो उन्होंने जो दमदार दाना जो लॉन्च किया था उसको सही दिशा में पहुंचाने का काम शुरू हो गया।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए हर चीज आज एक क्लिक के ऊपर में मिलती है, तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज करना चाहें तो हम अपने घर से भी इसमें ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता और डिजिटल बाजार के बीच एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मॉडल का एक बड़ा बदलाव ये है कि महिलाएं बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यवसाय संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय हुई। कुछ महिलाएं ग्राम सभा जैसे स्थानीय मंचों पर भी अपनी बात रखने लगी।
0: और कंपनी भविष्य में पशु सप्लीमेंट्स, हरा चारा, जैविक उर्वरक, कृषि इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण, इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है और दमदार दाना को बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें कहीं भी रुकना नहीं होता है, हम ये कभी ना सोचे कि हम में ये कमी है या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए
1: अभी समय हो गया एक छोटे से
0: अंतराल का।
1: हाँ।

0: तो ये गाना सुना और इस गाने को सुनने के बाद ना मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत खनक थी इस गीत में और मुझे भी बहुत पसंद है।
1: है
0: और
1: भी
0: अब
1: अच्छा।
0: बात करते हैं एक मुहावरे की जो है ओखली में सिर देना। नहीं, बहुत बार क्या होता है ना, इंसान मुसीबत में फंसता नहीं बल्कि मुसीबत को देखकर खुद ही कहता है कि आइए आपका स्वागत।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे मौकों के लिए ही हिंदी में बड़ी मजेदार कहावतें मुहावरे हैं, जैसे एक तो है भाई आबैल मुझे मारो, और एक है ओखली में सिर देना जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। यानी कि किसी भी परेशानी में जानबूझकर पड़ना और फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। और जब ओखली में सिर देंगे तो मुसल तो पड़ेंगे ना भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, पड़ोसी ने कहा भाई साहब मेरी शादी की तैयारियों में बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आपने कह दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं मैं तो करूंगा। तो और 5 मिनट बाद आप फूल सजा रहे हैं कहीं पर, आप कुर्सियां लगा रहे हैं, और आधे घंटे बाद आप मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, और शाम होते होते दूल्हे की सेहराबंदी भी आपके जिम्मे। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे भैया जरा उससे डीजे वाले से कह दो कि जरा और दूसरा गाना लगा दे। तो मतलब एक से लेके पूरा 10 तक सारे काम आपके जिम्मे।
0: बिल्कुल। यानी आपने कहा था कि भाई कोई ठीक है मदद चाहिए तो हमें भी बताना, बाद में आपको लगेगा कि भाई क्यों इस ओखली में सिर दे दिया हमने। और जब धनाधन धनाधन मुसल पड़ते हैं तब ये बात ध्यान में दी क्यों दिया था हमने इसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे?
1: बिल्कुल, श्रोता भी हमारे बहुत कुछ कह रहे हैं। और हमारे एक श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना मतलब आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को न्योता देना जो खुद के साथ साथ घर परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओखली परिवार और समाज में खलबली मचा सकती है। सच बात है,
0: सही बात है। और एक अन्य संदेश में श्रोता ने कहा है कि ये लोकप्रिय हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम मोल लेना। और ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना, इसका अर्थ है कि जब एक बार कठिन काम करने का निश्चय कर ही लिया है तो आने वाली जो भी बाधाएं हैं समस्याएं हैं उनसे डरना नहीं है। तो हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ में।

0: तो भाई मन का बावरा पंछी डोल रहा है और हमारे जो संदेश हैं वो भी आ रहे हैं। और ओखली क्या है इसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि ओखली वो भारी बर्तन है जिसमें अनाज को डालकर मूसल से कूटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना सर रख दे तो चोट लगना तो तय है। इसीलिए कहावत का सीधा सीधा संदेश यही है कि कठिन परिस्थितियां जोखिम को चुना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना तो व्यर्थ है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो भी कुछ कहना चाहते हैं, लिखते हैं कि हिंदी मुहावरा यानी कि ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम को मोल लेना। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि आगे चलकर भारी परेशानी नुकसान या संकट आने वाला है स्वयं अपनी मर्जी से किसी कठिन काम को हाथ में लेता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।
0: और भी संदेश है इसके लिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ओखली में सिर देना ये वाक्य जीवन के साहस और दृढ़ता को भी दिखाता है। यदि अपनी स्वेच्छा से कोई चुनौतीपूर्ण रास्ता चुन लिया जाए, जैसे कोई भी कठिन परीक्षा है, नया व्यवसाय है, तो अब उसके संघर्षों से डरने का कोई फायदा नहीं बल्कि डट कर उनका सामना करना है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना तो मूसल से क्या डरना, बड़ा रोचक है। अगर गाना चला दें तो विविध भारती को ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मतलब डर। इनका कहना है कि नए गाने आए चाहे पुराने गाने आपको सुनना है ऐसा भी नहीं है।
0: एक हमारे श्रोता है जिन्होंने अपना संदेश साझा किया है, ये बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम घर की जो महिलाएं हैं चाहे वो पत्नियां हैं बहनें उनको करना पड़ता है। हमारे पापा का पोस्टमार्टम तो भीलवाड़ा में करवाया गया और इन्होंने अपनी कुछ घटना लिखी है कि पुलिस वालों के साथ में कुछ इस तरह की बातचीत इनकी हुई तो फिर मुनीम को के जरिए वो काम करवाया गया, तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इस तरह का कार्य जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज मैं दांतों के डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर कुछ ने जब चेक किया तो उसने कहा कि कुछ जो दांत हैं वो खराब हो गए तो इन्हें नया लगवा लीजिए उसको निकलवा के। तो मैंने कहा लगा दीजिए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया पर मैंने यही सोच लिया कि अब ओखली में सिर दिया है तो डरना कैसा, यानी कि अब दांत निकलेगा तो दर्द तो होना ही होना है, उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा।
0: यानी कि सिर्फ दिखाने गए थे और दांत का ट्रीटमेंट चालू हो गया। चलिए अब हम भी एक गाना सुन लेते हैं।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: बिल्कुल
0: और बातों के साथ
1: और संदेशों के साथ में और ओखली हमारी चल रही है। तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। तो मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से पछतावा कैसा। फिर हम दोनों हंस देते हैं और अगर उस समय बच्चे बैठे हों तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई फिर से डरना क्यों है, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ में उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है भाई आरती? मिठाई
1: आती है, तरह तरह के पकवान,
0: रिश्तेदार? नहीं, सबसे पहले शुरू होता है भाई चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने भी।
0: और पता है घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहारों में पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको

0: मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार तो होता ही है कि साल भर जो सामान अलमारियों में पड़े रहते हैं उनकी हमें याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई ये काम की चीज नहीं तो इसे निकाल दिया जाए या काम का है तो रख लें, कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज, भाई नहीं रख दो काम की चीज है।
1: बिल्कुल। और वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी इसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारत फैमिलीज होती है उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज हम उसको खराब नहीं करते, कोई डिब्बा है तो उसको खाली चलो उसको धोके रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी, चावल निकलेंगे।
0: साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात कोई ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पे मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या जंग लग के खराब हो गए, लेकिन उस चीज से जो जुड़ाव उसकी वजह से भी हम
1: उस चीज से क्या उसकी यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते हमें कोई पुराना फोटो मिल जाए बस
0: एल्बम
1: फिर क्या हो गया काम, फिर तो सफाई बंद यादें शुरू, अरे ये फोटो देखो वो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था या कितनी पतली थी, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला,
0: और इतने सारे ऑफर भी उन पर डाल दिए जाते हैं, और घर से जब हम निकलते ना खरीदारी के लिए तो एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है या फला फला चीज लेनी है, लेकिन जब बाजार पहुंचते हैं तो बस वो जो कहते हैं ना कि लुभावने अवसर जो होते हैं जो ऑफर होते हैं उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं जूते भी लेने हैं सजावट की चीजें भी ले लो तो कुछ मिठाई भी ले लो, भाई जो मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो, और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है, तो कई बार क्या करता है मैं
1: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो
0: ताकि बहुत सारी चीजें और खरीद ले।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सजी जो दुकानें होती हैं जो सामान होता है इतना सजावट भरा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है तो मन ही नहीं करता वहां से हटें, अच्छा ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में लेकिन उसे उठा लाते हैं।
0: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए, कोई एक कहते हैं कि लाइट लगानी है हमें तो एक लेनी होती है साथ में दो और लेते हैं, ये वाला झूमर भी ले लें ये वाली कंदील भी ले लें ये वाली लड़ भी ले लें, इस तरह से वो सामान बढ़ता चला जाता है और बजट पर भारी हो जाता है।
1: और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े लेते हैं ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का साथ ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य कहता है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं है ना,
0: बस वो इंटरनेट पर देखते हैं हम सर्च करते हैं कि नए नए डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहां सजावट देखी बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लगना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा लगता है, और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने सिर्फ कहते ना दिखाने के लिए काम करता है, कुशन को उठाया यहां से वहां रख दिया, ये उठाई चीज वहां से वहां रख दी, जो काम जिसे ना करना वो काम के बहाने भी इस तरह से
1: बिल्कुल छोटी छोटी चीजें रखी, अच्छा ये चीज वहां रख दी तो काम कर रहे दिख रहा है कि देखो हम काम कर रहे हैं इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा क्योंकि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा।
0: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: सच में जो बहारों की जो ऋतु आ रही है यानी कि त्योहारों की ऋतु आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहां सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार आ रहे हो और घर में साफ सफाई ना हो ये असंभव है, और पतिदेव के पॉकेट की भी सफाई ना हो ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की खरीदी वैरायटी से भी भरी बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है, इसके सामने पतिदेव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
0: और अब सबसे पहले जो त्योहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं तो जो साज सज्जा होती है उसमें कपड़ों के, गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है। बाजारों में बहुत धूम मची हुई
1: है। बिल्कुल, इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयां, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वही विंडो शॉपिंग और तोल मोल करना, ये सब अपना ही एक अलग मजा होता है इन चीजों का।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ सफाई करने में काफी दिक्कत आती है, सफाई भी बहुत काफी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से ही सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहता हूँ, फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
0: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है, ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्योहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी बेकार है। इसीलिए असली मजा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहां एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
1: बिल्कुल। एक मैं साथी हैं जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बड़ा बेमिसाल मुद्दा है। त्योहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियां, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती हैं। अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती हैं। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता, लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई करती हैं और जाले भी साफ करती हैं, फिर माँ सब्जी बना देती हैं और उसके बाद बहन रोटियां बेल देती हैं। सफाई तो नजाकत से बहन करती ही हैं। मतलब चीजें हैं कि देखिए, साफ सफाई घर में होनी चाहिए, बहुत सारी जो ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो जाती है।
0: और इसका पूरा सीधे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका भी यही है, क्योंकि सीलन की बदबू

0: हो चुकी होती है घरों में और सीलन से कई बार चीजें खराब हो चुकी होती हैं बारिश के बाद में। फिर जब ये त्योहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं मकड़ियों के, उसकी साफ सफाई हो जाती है और पूरा घर, कई बार जब हम लिपाई पुताई भी करवाते हैं तो जो कोनों में कीड़े मकोड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और पुरानी चीजें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकालकर घर में जगह बना दी जाती है। और आरती त्योहारों का असली मजा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसियों के घर भी कई बार हम मिठाइयां पहुंचाते हैं उनसे ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सबके साथ मिलकर ये खुशियां बांटना ये बात ही अलग होती है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी, सजावट सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है, मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जो जितने भी कबर्ड हैं, अलमारी हैं, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीजें मुझे मिलती नहीं है और श्रीमती जी को इससे बाहर रखना पड़ता है और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीजों में मेरी जो चीजें वो मैं ही रखता हूं, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है, मतलब त्यौहार में ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना कि जब त्यौहार में सफाई होती ना तो मेरे सामान कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है ना बहुत खतरनाक होती है कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहाँ रख दिया। तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने घर, अपने कमरे की सफाई, अपने सामान की सफाई खुद करें ताकि हमें अपने जो हमें मालूम होगा कि हमने कहाँ रखा है वो सामान।
0: तो हम बात कर रहे हैं कि अपने घर की, अपनी चीजों की सफाई कैसे रखें, इसके साथ छोटा सा एक काम हम ये भी कर लें कि मन को भी साफ करें। हम कई बार अपने मन में लोगों के प्रति जो भावनाएं रखते हैं उनको भी साफ कर सकते हैं और घर को साफ करने के लिए भाई नई चीजें खरीदी, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं जो कई बार तकरार हो जाती है और मन में हम मुटाव लेकर बैठ जाते हैं और बुरी भावनाएं लेकर बैठ जाते हैं, उनकी भी सफाई करिए और बिल्कुल सारी गिले शिकवे भुलाकर त्योहारों में उनसे भी गले मिलिए।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो साथी हैं वो इसी बात को कहते हैं जो आपने कहा है कि सफाई, सजावट और खरीदारी त्योहारों की केवल बाहरी तैयारियां हैं, इनका असली उद्देश्य हमारे भीतर खुशी, संतोष और प्रेम का संचार करना है। जब घर का हर कोना साफ और जगमगाता है तब मन में भी खुशियां उसकी एक नई रोशनी जल उठती है।
0: बिल्कुल। घर भी सजाइए लेकिन रिश्तों में भी थोड़ी सी रोशनी लगाइए, क्योंकि त्योहार की असली रौनक बाजारों में नहीं या सजावट की दुकान में नहीं मिलती, वो तो अपनों के साथ मिलकर बैठती है जब उनके साथ मिल बैठकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए हम भी एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: हमारा प्रोग्राम भी अब आगे चल रहा है और हम बता दें कि आज बहुत एक खास दिन है जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस। और आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है, कुछ भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील विषय है और समाज को प्रेरित भी करती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो इस तरह के मरीज होते हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं, उनको खास तौर पर हमारे प्रेम की बहुत जरूरत होती है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी जो सेरेब्रल पॉलिसी है ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित कर सकती है। ये मस्तिष्क के विकास से जुड़ी क्षति या असामान्य विकास के कारण होती है
0: और ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें मांसपेशियों का तनाव और अकड़न बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक और इसका प्रकार है जिसमें हाथ पैरों और हथेलियों के कुछ मामलों और चेहरों और जीभ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जो मरीज है उनके लिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही ये एक तरीके की ऐसी भी होती है जिसमें कि मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे चलने में अस्थिरता आ सकती है और सटीक जो नियंत्रण होती है उसकी आवश्यकता वाले कामों में कठिनाई हो सकती है।
0: बिल्कुल, किसी को चलने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है, तो किसी को बोलने या फिर रोजमर्रा के जो काम है उनमें किसी भी तरह का सहयोग लेना पड़ता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं और किसी को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, किसी को थोड़ी कम होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति की शारीरिक कठिनाई को देखकर हम उसके लिए अपनी सीमाएं तय कर देते हैं। यहीं से सोच बदलने की जरूरत है। कोई किसी से ये ना कहे कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि ये कहे कि आपको ये काम करने के लिए किस तरह की मदद चाहिए।
0: और बस यही अंतर होता है सहानुभूति में और सम्मानजनक सहयोग में। तो हम सहानुभूति ना दिखाएं, उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को भी समझें और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल। और इस वर्ष के लिए इस दिवस का मुख्य विषय भी चुना गया है जो कि है यूनिक एंड यूनाइटेड, यानी कि अद्वितीय और एकजुट है, जो व्यक्तिगत आवाजों और सामूहिक एकता की ताकत पर जोर देता है।
0: तो चलिए अब सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो हम ले रहे थे अपने किस तरह से, श्रोता बता रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई करते हैं, सब सजावट करते हैं,
1: लेकिन संदेश आने बंद ही नहीं हो रहे हैं।
0: हाँ तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इन सब तामझाम के बीच में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब काम खत्म करके पूरा परिवार पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठता है और चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी यादें ताजा करी जाती हैं, रिश्तेदारों की खिंचाई की जाती है और हंसना हंसाना ही त्योहार को सच में त्योहार बनाता है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि गणपति पर हमारे यहाँ बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे किसी ने भेजे थे और इन चॉकलेट के डब्बों में हमने मक्खन रख लिया, तो आपने सही कहा कि काम करते करते कई बार एक एल्बम भी मिल गई तो सफाई धरी रह जाती है, यानी कि हमारी जो बातें हैं उनसे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे जो श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयां और गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें और बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है, फिर भी विंडो शॉपिंग और तोल मोल करने का अपना ही अलग मजा है।
1: तो चलिए अब एक गाने सुनने का भी अलग मजा होता है, सुन लेते हैं गाना।

0: तो भाई इस गीत के साथ में घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि सयोनारा कहने का
1: हम भी सयोनारा कहते
0: हैं। कल फिर आएंगे सखी सहेली लेकर, ये वादा करते हैं,
1: लेकिन कोई और और इसी के साथ में हमें अनुमति दीजिए यानी कि आदित्य श्रीवास्तव और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का। दिन तक दिन।

0: ये है विविध भारती,
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहाँ से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
8: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
7: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
9: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
7: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की।

0: सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।